तो एक नई सुबह, एक नई मुलाकात, एक खूबसूरत नए रोशन सवेरे के साथ कलाकारों की खूबसूरत आवाजें, वो गायक जो हमारे मन पसंद होते हैं, जिसको सुनने की एक आदत सी हो चुकी है, कुछ यादों को ताजा करना, पुराने जमाने की खूबसूरती को इस मॉर्निंग की खूबसूरत सवेरे के साथ दिल से एंड दिल की गहराइयों से इंजॉय करना, ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत लम्हों को, यादों को ताजा करने के एक बहाना सा बन जाते हैं। तो एनीवेज, इस मॉर्निंग की खूबसूरती के साथ, कुछ पुराने गीतों के साथ जमाल हाजिर है आप लोगों के साथ।

सुनने में तो बहुत गाने आजकल हम सुनते रहते, लेकिन जनाबे आला वो खूबसूरत गाने जो हमारे मनपसंद होते हैं, जिस गीत के साथ कुछ यादें हमारी बिल्कुल वाबस्ता होती है। सफर तो जिंदगी का गुजरता रहता है, आज भी कल भी और आने वाले कल के साथ भी वो सफर जारी रहता है, लेकिन कुछ यादों को ताजा करने के लिए, कुछ खूबसूरत चेहरों को बिल्कुल अपनी निगाहों के सामने लाने के लिए ऐसे खूबसूरत गानों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसे गीत जब भी लग जाए और उसकी ड्यूरेशन टाइम 3 मिनट्स हो 4 मिनट्स हो 5 मिनट्स हो, कहानियों की दास्तानें हमारी जिंदगी की खूबसूरत मजमून को, एक कहानी को बिल्कुल खूबसूरत सुंदर अंदाज के साथ, इन गीतों के साथ पेश कर लेते हैं। तो हर रोज ये सिलसिला होता है आपको और हमारे दरमियान, दिल की खूबसूरत लगन को महसूस तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन जब भी उनके कुछ फेवरेट्स लाजवाब सुंदर गीत लग जाए

सो ऑल टाइम माय फेवरेट सॉन्ग, मनपसंद गीतों में से एक बहुत ही खूबसूरत गीत। सवेरे उठकर हर इंसान कुछ अच्छा देखने की ख्वाहिश रखता है, अच्छा सुनने की तमन्ना करता है, लेकिन जब भी इस नए सवेरे की खूबसूरती के साथ रेडियो प्लस पर जमाल के साथ आप लोगों के साथ होता है, सो एक से बढ़कर लाजवाब गीत आपके लिए पेश कर लेते हैं, जिसमें कलाकारों की एक लाइन सी लग जाती है। किसी का पसंदीदा तलत जी होता है, तो किसी का रफी जी होता है, किसी का किशोर कुमार जी होता है, किसी का लता जी होता है। सो ऐसे बेशुमार खूबसूरत गायक जो हमारे दिलों पर आज भी राज करते रहते हैं, उनकी आवाजों का एक सिलसिला हमेशा की तरह रेडियो प्लस पर जमाल के साथ इस मॉर्निंग की खूबसूरती बन ही जाता है।

लाजवाब गीतों के इस खूबसूरत सफर के साथ चलें अभी के लिए बढ़ेंगे सेकंड आवर की तरफ कुछ 90s के ब्यूटीफुल शानदार खूबसूरत सुंदर गीतों की ओर जुड़ते रहिए हमारे साथ स्टे ट्यून्ड।

0: सिर्फ खूबसूरत गीत के साथ सेकंड आवर में हम सभी को स्वागत। लेकिन चले नीलम भी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग नीलम।
1: गुड मॉर्निंग जमाल एंड गुड मॉर्निंग लिल मुखीस। बोंजूर रेवेयू। जागो जागो, सुबह हो गई।

0: सो ऑल टाइम माय फेवरेट. जी हाँ, ये उन लोगों के लिए जो माँ बाप से बेशुमार प्यार करते हैं. जी नीलम जी.
1: जी बिल्कुल. वेल जमाल, हम लोग बात कर रहे थे आज रात चांदनी है और हम दोनों साथ साथ हैं. वेल चांदनी तो नहीं है बट सुबह आ गई है. यस, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग बन का मगाद एंड टुडे इट्स अ मंडे. मंडे मॉर्निंग है एंड ऑल द फैंस ऑफ मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, ओ गॉड, आज मुझे पता है जमाल पूरा ऑफिस में यही बात होने वाली है कि कैसा रहा मैच. एंड मैनचेस्टर फैंस आर फ्लाइंग राइट नाउ, लिवरपूल फैंस अ लिटिल बट लाइक यू नो डिसहार्टेंड, बट कोई बात नहीं यार, ये तो गेम ही है.
0: आपने किसको सपोर्ट किया?
1: मैनचेस्टर भाई. मैं हमारे घर में सब मैनचेस्टर है, सो इफ आई गो फॉर लिवरपूल देन घर पे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई आई सेड ओके इट्स बेटर टू बी विद द फैमिली. सो आई सपोर्टेड मैनचेस्टर यूनाइटेड.
0: मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो कल कमाल कर दिया है. लेकिन इस खूबसूरत इस खूबसूरत मॉर्निंग की खूबसूरती के साथ 5:13 का समय हो चुका है. चलेंगे इस खूबसूरत गीत की ओर. लेकिन चले ये खूबसूरत गीत उन सुनने वालों के लिए जो सुबह सवेरे उठकर अपनी काम की तैयारियां करते हैं.
1: एंड पाब्ली अबोई मैसेज लुसैंक विद नफकात का नफ नफ नफ, इंतजार है आपके मैसेजेस का.
2: 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट द

0: सो आज इस मॉर्निंग पर जी हमारी सिलेक्शन भी कुछ नीलम को पसंद ही आई होगी जी हाँ
1: एब्सोल्युटली यार आपकी पसंद जो है मुझे हमेशा पसंद आती है यू ऑलवेज प्ले सच रोमांटिक सॉन्ग्स जमाल एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग आई नो मंडे मॉर्निंग थोड़ी सी डिफिकल्ट मॉर्निंग होती है इतना सारा काम होता है किचन में यार बच्चों को स्कूल भेजना है एंड आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे ये तो एक लॉन्ग वीकेंड था आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग की यार लैन जी बाप रे बाप आयो पिल्लू है बट पापा त्राका नूला टू मेक योर मॉर्निंग गुरी गुड वी आर गोइंग टू प्ले सम नाइस म्यूजिक फॉर यू और साथ में होंगे आपके लिए आपके मैसेजेस लेकर हाजिर सो पब्लिए यू मैसेजेस लो सैंक विद नफकात कत नफ नफ नफ
0: डेफिनेटली इनके मैसेजेस भी आ रहे हैं विल डू माय बेस्ट कि आज इनके मैसेजेस इन तक पहुंचाएं मंडे मॉर्निंग की खूबसूरत ये होती है कि इंसान जब जाग जाए लेकिन एक चीज का थोड़ा सा अजीब लगता है नीलम कि सुबह उठकर जी हाँ काम की तैयारियां करनी होती है नॉर्मली तो आप वीकेंड पर बहुत मजे चर्चे कर लेते लेकिन चले आज के इस दिन के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस खूबसूरत समाचार चल रहा है इस मॉर्निंग को एंजॉय करते जाइए जमाल के साथ स्टे ट्यून नीलम के साथ स्टे ट्यून

0: सो मिलने से तो सब कुछ मिल ही जाता है, और फिर ऐसे गीत जब लग जाए तो दिल को तसल्ली भी मिल जाती है। हाँ नीलम।
1: यस एब्सोल्युटली जमाल, एंड रियली तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। कुछ ऐसे लोग आते हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपको जिंदगी से प्यार हो जाता है, जिंदगी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन हाँ, कभी यही इंसान जो है बड़े टॉक्सिक हो जाते हैं। व्हेन दिस पीपल बिकम टॉक्सिक, लेट देम गो। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी तबीयत सबसे ज्यादा जरूरी है। वेल डियर लिसनर्स, ये मैसेज कहता है, विशिंग यू ऑल अ ब्लेस्ड मंडे, होप यू आर हैविंग, यू हैड अ ग्रेट वीकेंड, फीलिंग हैप्पी टू हियर योर वॉइस एंड हियरिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। वेल, इन सारे ब्यूटीफुल गानों का क्रेडिट जो है वो जमाल को जाता है, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, मैं आराम से गप्पे शप्पे मार रही हूँ, जमाल इज द वन हु इज चूजिंग ऑल द सॉन्ग्स आपके लिए, और सारा काम वही कर रहे हैं। आज मैं इनसे काम करा रही हूँ, देखो हम ही आराम से बैठ के। वेल दिस मैसेज सेज, नमस्ते नीलम जी एंड जमाल जी, अंजू हियर बैक फ्रॉम थाईलैंड ऑन संडे, नाउ प्रिपेयरिंग फॉर वर्क, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल वीक अहेड। वाओ वंडरफुल यार, आपने एक भी पिक्चर शेयर नहीं करी। थाईलैंड कैसा रहा? वेल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और वहां पे खाने का तो मजा ही आ जाता है जमाल। आई वॉज देयर लास्ट ईयर।
0: आप गए थे?
1: यस, एंड बहुत बहुत बहुत मस्ती करी, बहुत मजा आया। इट वॉज अ वंडरफुल हॉलीडे। इनफैक्ट हम कुछ दोस्तों के साथ थे, एंड अ बिग हेलो टू विनोद जी एंड जीवा जिनके साथ हम थाईलैंड गए थे। देन दिस वन सेज, गुड मॉर्निंग, वाओ नाइस सॉन्ग्स, लव ऑल, हैप्पी मंडे एंड हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, दैट इज नलिनी फ्रॉम तमाखे। वेल यू मेक आवर मॉर्निंग ब्यूटीफुल नीलम जी विद दीज लवली सॉन्ग्स, एंड पमोसा जमाल साजो जी, जो जी मोपा पे स्वाजी एनी सॉन्ग, इट्स हिम हु इज द बॉस टुडे। Alright.
0: और इसके साथ चलिए फर्स्ट आवर में हमें कॉल्स आए थे, लेकिन एक कॉल मैंने पिक की थी जिनका है आज जन्मदिन सपना का। नीलम उनको विश करेंगे अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे टू यू सपना।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू श्वाइजा नी, वैसे हैप्पी बर्थडे सपना, मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज बी हैप्पी, आपका हर देखा हुआ सपना पूरा हो सपना।
0: एग्जैक्टली लेकिन चले इस खूबसूरत सफर के साथ उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी, इस सफर की खूबसूरती चले इस खूबसूरत डेडिकेशन के साथ।

0: 25 ये लेट्स गो एंड चेक आउट कौन है जो हमारा सेंटेंस पूरा करेगा और जीतेगा 30 मिन व्हाट
1: 13h 14h
0: Yanis Nina Ok allons nous venons
2: comme ça Nina une personne avec nous bonjour
3: Bonjour pehla vakya bolo
2: Oui comment vous appelez
3: Vasanti.
2: Vasanti de quel côté?
0: Vasanti, Vasanti.
3: Vasanti.
2: Allez, dis-nous Vasanti. Complète la phrase. Quelle phrase tu dis?
0: Kya dil ne kaha?
3: Kya main ne suna?
0: Non, nahin, galat jawab.
2: Nahin.
0: Better luck next time. Dosto wait, cut nuff nuff nuff. Dosto wait, sank nuff nuff nuff. Are you? Hello.
2: Bonjour.
0: Bonjour.
2: Oui.
4: Bonjour.
0: Janu, comment vous appelez?
4: I'm really sorry, I don't.
0: Ah, okay. आप हिंदी बोलते हैं?
4: हिंदी, yes, हिंदी बोलता हूँ.
0: अच्छा, बताइए जी कौन बोल रहे हैं?
4: मैं सागर सोलंकी.
0: सागर सोलंकी, सागर से गहरा है क्या? सागर से गहरा है प्यार.
4: सागर से गहरा है प्यार.
0: Okay, सागर सोलंकी साहब, अगर मैं बोलूँ क्या दिल ने कहा?
4: क्या तुमने सुना?
0: ओए होए, बला बला हुआ. Absolutely right, Sagar. Congratulations.
4: Thank you so much. Thank
0: अच्छा,
4: you.
0: Thank you से पहले आपको ये गा के सुनाना पड़ेगा. इससे पहले कि हम आपको गिफ्ट दें.
4: जी बिल्कुल.
0: One, two, three, go.
4: क्या दिल ने कहा? क्या तुमने सुना? क्या दिल ने कहा? क्या तुमने सुना? पलके झुकी है सांसे रुकी है कोई हमें पुकारे अनजानी राहें थामे हैं पाहे हम भी नहीं हमारे ओ यारा क्या दिल ने कहा
0: क्या तुमने सुना
2: सागर सौदी का सौदी लाने
0: ब्रावो सागर क्यों आप क्या करते हैं व्हाट डू यू डू इन लाइफ
4: I'm working right now.
0: Okay.
2: Okay. Port South Hawaii. Where? Kaha?
4: Kudong.
2: Kudong me.
0: Okay. Abhi hello. Abhi main Kudong se hi wapis aa rahi hu. We went for a site visit at Rewa. Yes. Okay. So have a wonderful day ahead and all the very best and felicitasyo kamkado. You are winning 30 boxes of Min Nabi Khana.
2: 30 boxes? No. And what? And what? And what? And
0: what?
2: Allez, Sagar, go on la liste, stay online. Nous pouvons avec vous en antenne, okay?
4: Thank you so much.
2: Allez, bye bye.
0: Thoda sa intezar kijiyega.
2: Allez, nous avons aussi un autre jouet là, allô la page Facebook Radio Plus. Continuez à faire ici les tout, mettez votre réponse, une mettez une photo, une poster, un film. Enfin, une scène, un film, vous avez nous que ça film là ça. Allô la page Facebook Radio Plus et comme cadeau deux billets pour le get.
0: Bout bangla.
5: Hi, this is Ranveer Singh. I'm on Radio Plus in Mauritius.
6: Hi Mauritius, this is Arjun Rampal and what Dhurandhar has done and I'm just very, very grateful that I've been part of it.

0: Well, dear comrades, welcome to Bollywood Corner. आ गई है आपकी नीलम लेकर आपके लिए कुछ बेहतरीन गाने, कुछ गादो और बॉलीवुड की कुछ खबरें. साथ ही बातें रहिएगा रेडियो प्लस पर. I'll take a teeny mini break and I'll be just back after.
1: Radio Plus, la différence.
2: Al mettre la guide en branche, un tape à pied, nous connaît ni pas facile. L'assurance est marie compliquée et nous démarche trop souvent aussi. L'appli Health by MUA et le portail client simplifient vos réclamations et vos renouvellements. Si changement, gros l'impact.
3: MUA, always improving for you.
4: Radio Plus. Radio Plus, la radio qui vous accompagne, jour et nuit.
5: जिंदगी
6: खट्टी मीठी
5: नीलम के साथ
7: नीलम शर्मा.

0: a तड़प on Radio Plus. तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया. कौन है जिसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं? अपनी मोहब्बत के नाम भेजेगा प्यारा से पैगाम नुसैंक विद नफकात कतफ नफ नफ इले कतुजिया थ्रोन थोड़ा.
1: 1 to 3 PM.
2: नीलम शर्मा.
0: Alright, well, चलिए भाई कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं. This one says, Happy birthday to Purnima, Purnima Ramia. Hey, happy birthday to you. Shwayo da Nivesei. Happy birthday to you, Purnima of Twa Boutique. From Yashwin, Kenraj, Rishmi, साथ में Suraya, Pritima, Jivan, Swaraj, Gyani की तरफ से, Anita Ram स्वामी की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. फ्रॉम रमाना एंड रामिया फैमिली की तरफ से भी ढेर सारी बधाइयां आपको. कहते वी आर लविंग द म्यूजिक. मेर्सी बुकू कमराद. वेल दिस वन सेज विशिंग अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू दिवेश करिश्मा फ्रॉम रविन ज्ञान ज्योति की तरफ से. ऑलराइट, वेल दिस वन सेज हेलो नीलम एंड यानिश लॉन्ग टाइम. वेल प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर माय सनशाइन. ऑलराइट बेब्स आई विल डू दैट. कौन है आपका सनशाइन? बताओ बताओ कौन है वो. प्रिया फ्रॉम लावोंचे इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ. कहती है हैविंग माय लंच नाउ विद हबी जयविंद. क्या बात है, जयविंद की जय हो. और यूं ही खाते पीते रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, दोनों साथ में रहो. वेल सुल्तान दो ग्रोबे बोंजू सवा को है कवागाद. ऑलराइट, हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस. हियर वी गो फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह. वेल एंड कवागाद पे जिया नीलम जी, नाइस टू हियर यू एट दिस टाइम. मेसी मेसी nice to be here at this time. Sabira ne thodi dinon ki chutti li hai, isliye maine kaha main aa jati hu.
1: Neelam.

Well, that was Kabir Singh on Radio Plus. वाकई जिंदगी में ऐसा होता है ना कि कोई इंसान आपकी लाइफ में होता ही नहीं है. That person doesn't exist. लेकिन वो suddenly आपकी लाइफ में आता है और वो सबसे ज्यादा important इंसान बन जाता है. वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसके बिना जीना, खाना, पीना, सांस लेना मुश्किल हो जाता है. इतनी मोहब्बत हो जाती है उसे एक इंसान के साथ, है ना. ऐसा क्या आपके साथ हुआ है बताइएगा. कौन है वो लकी पर्सन? लेट मी नो लो सैंक विद तफकात कतफ नफ नफ. अभी के लिए एंजॉय द ट्रैक फ्रॉम द मूवी भेड़िया. इले कतजिया थ्रॉन्स विद बन कमराज. यू आर लिस्निंग टू योर नीलम इन योर बॉलीवुड कॉर्नर.

और इस न्यू आवर के खूबसूरत जर्नी के साथ, इस नए सफर के साथ चले हम हाजिर एक दफा फिर आपके लिए। जुड़ते रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते जाइए दिल से, दिल की गहराइयों से लाजवाब नाइट लाइफ का सफर जमाल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

रात के एक और खूबसूरत मुलाकात एक नए खूबसूरत मिलन के साथ, ब्यूटीफुल ट्रैक्स, हमारी ब्यूटीफुल सिलेक्शन, आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेडिकेशंस इस ब्यूटीफुल सीजन के साथ। वो कहते हैं ना, जब भी सीजन बदलता है मौसम का, और तब आपके लिए कुछ ट्रैक्स, कुछ खूबसूरत लोग मेमोरीज के शक्ल में हाजिर हो जाते हैं। सो चलिए अभी के लिए लेट्स गो फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

इस न्यू आवर के खूबसूरत जर्नी के साथ, इस नए सफर के साथ चले हम हाजिर एक दफा फिर आपके लिए। जुड़ते रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते जाइए दिल से, दिल की गहराइयों से लाजवाब नाइट लाइफ का सफर जमाल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

सोबी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है नाइट लाइफ की जर्नी के साथ प्रिया. एंड प्रिया डेडिकेट करना चाहती है नेक्स्ट सॉन्ग अपने हस्बैंड के लिए जो इस वक्त काम कर रहे नाइट शिफ्ट के साथ. सो अविनाश के लिए खूबसूरत सा गीत प्रिया की तरफ से है.

सो ऑल टाइम माय फेवरेट सॉन्ग. लेकिन चलिए, सफर तो चलता रहता है, रात की तन्हाई का आलम होता है और ये 4 आवर्स का सफर बहुत खूबसूरत गुजर ही जाता है. कुछ ऐसे घड़ियों को भी महसूस किया जाता है कि कुछ ट्रैक्स हमने बहुत जमाने से नहीं सुने होते, स्पेशली आपके डेडिकेशन के साथ सुन लेते तो ऐसे हमारे सिलेक्शन के साथ भी बहुत जमाने के वो खूबसूरत लम्हों को महसूस करने का एक बहाना बन जाता है. और वो ट्रैक जो आपने नहीं सुने होते वो भी आप सुन लेते हैं. लेकिन चले, ये खूबसूरत रात का सफर हमारे साथ ही चल रहा है. अभी के लिए मेरे पास बहुत ही प्यारा ट्रैक है. सो लेट्स गो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. चुरते रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड.

सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ, नाइट लाइफ की जर्नी के साथ, आपके ब्यूटीफुल डेडिकेशंस के साथ एंड हमारे ब्यूटीफुल सिलेक्शन के साथ, अभी के लिए फॉर नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। कल मिलेंगे एक नई मुलाकात के साथ, अभी के लिए जमाल को इजाजत दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, फॉर योर डेडिकेशंस, फॉर योर फोन कॉल्स। मैसेज को दिल से आप सभी का शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिएगा, गुड बाय।